जात ते जियो कंचो इशनान सिर कंपियो भगत दगम के नैन जोत थे हीन काहु नानक एबित पई तो ना हार रसलीन निज घर देके

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सहती मन वजिया वादाया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्दोता गावो हरि कैरा मन जिनी वासाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सोखियो मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किच है जिसते सो पावे सदा सिफत साला तेरी नाम मन वसारे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द गनेड़े कहे नानक सचे साहेब क्या नहीं करते रे सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन पूका सब गवाया कर शांत सुख मन आय वसियाए जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान कीता कुरबेटो जिस दिए वड्याया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंथ शब्द कर स्वागे कर सवागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच तुत तुदवास कीते काल कंट कमारिया तुरकारम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक ते सुख होआ तित कर अनहद वाजे मुनावनी महला पंजवा ताल विच तिन वस्तो पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पायो जिसका सबसे अदारो जे को खावे जे को पुंछे तिसका होए उदारो एहे वस्त जीने जाए नित नित रख उड़दारो तम संसार चरण लग तरे सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा।

अग्नि उद्रमाए। सुन के जम के दूत नाए छले छट जाए, पौजल बेगम असगा गुर सबदी पार पाए। जिनको लगी प्यास अमृत से खाए, कल में हो पुन गुण गोविंद गाए। सब से नो कृपाल समले साए साए, बिरता कोय ना जाई जे आवे तुधाए। श्लोक मेला पंजवा, अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना सुन सवनी सुनना गुण नाओ। सतगुर से तीरत्या दरगे पाए ठाओ, कहो ना ने कृपा करे जिसनो ए वत दे। जग में उडम काडिये विले के ई के माला पंजवा, रखे